जीवनयाता शीतलता धीमा जीवनयाता जीवित यैमा अलेना पं छेगु जीवनया पला पला न्हि फुकीमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवनयाता शीतलता बीमा जीवनयाता जीवित यईमा अलिना पा छिगु जीवनया पला पला न्हिपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: तीस वर्ष देखि इन्टरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंग मनसँग जोडिएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंग.
1: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
1: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.

0: साथ अब नेपाल भरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
4: Nepali Super Hits.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: Life-Changing Quotes. ठूलो सोच्नुहोस्, आफैलाई विश्वास गर्नुहोस् र काम बनाउनतिर लाग्नुहोस्।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3।

0: 98.3 FM.
1: राजा मोतीवा मोती नायवा ने पूछे चंगुटु के
2: नेपाल भाषाया न्याही पुसी चौमेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 MHz.
4: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
5: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
4: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3.

0: life-changing quotes. तपाई आफै के सोच्नुहुन्छ यो बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो न कि अरूले तपाईको बारे के सोच्दैछन् यो भनाइ हो सन्दीप महेश्वरीको
1: राजा मतिवा मती नएवा ने पुछे चंगुटु के
2: नेपाल भाषा या न्याय पुसी चौमेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
4: किप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर
5: मुझे कैसे पता न चला
4: Every Friday, 12 p.m.

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: लो याद सुनाओ लो गीत बॉलीवुड गोल्डन हिट्स कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा
1: दिल दीवाना बिन सजना के
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा

0: number 18.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए.
0: मूवी
2: पति पत्नी और वो दो.
0: सॉन्ग
2: हमने वही लगाया दिल.

0: Number 14.
1: तेरी खबर किस दिल वाले चोर नुमा
2: मूवी
3: पति पत्नी और वो दो
2: सॉन्ग
3: दिल वाले चोर
1: खबर

0: Life-Changing Coach。दुख को औषधि केही नभएर आशा नै हो, यो भनाइ हो विलियम शेक्सपियर को।
1: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ में रमाइला सेगमेंट्सहरु कार्यक्रम
0: म्यूजिक मजा म्यूजिक
1: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजे देखि 9 बजे सम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र केप्स 98.3 एफएम मा।
2: Are you ready to turn up the volume and rock out like never before?
3: From Led Zeppelin to AC/DC, from Queen to the Rolling Stones.And from Guns N' Roses to Nirvana, we've got the ultimate playlist of rock greatness.
2: Join us as we journey through the decades of rock and roll, featuring the timeless classics that still get your heart pounding and your fists pumping.
3: Don't miss a beat. Mark your calendars and set your alarms because it's time to rock out with the best.
2: Rock Fever.Every Friday 9 a.m. and every Thursday 7 p.m.
3: Radio station Keeps FM 98.3 megahertz.
4: Wake me up when September ends.
5: Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma paincha motorcycle, scooter, car, van, jeep, pickup, hatti gadi, bus, truck, excavator.ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी हरू विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
6: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल करना होस बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
7: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
8: सिंपल Say yes to radio advertising.
7: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
8: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
7: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
9: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
0: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
10: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
0: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
10: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
9: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
11: 01 42 35 888 98 012 35 888
12: You can dance.
13: You can sing. All you gotta do is
14: just tune in.
1: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion.
15: The radio of new generation.
16: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 megahertz.
8: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
16: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
17: Keeps 98.3 FM, Gazal Sansar.

0: Uh-uh. Don't change the station. We'll be right back. You are listening to Skips FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
2: दिल दीवाना, बिन सजना के।
1: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा।
3: Bali Pop Flashback Every Sunday and Tuesday 10 p.m., Thursday 9 a.m. and Saturday 5 p.m.

0: भाषाया न्याई पुसिचौं मित।
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स FM 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि कुरु कुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: द वीकली काउंटडाउन शो ऑफ टॉप 10 इंग्लिश नंबर्स विद एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स Classic Choice, Info House, Fresh Hits, and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
3: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
2: on KIPS 98.3 FM.

0: every Tuesday and Friday, 1 p.m., Wednesday, 10 p.m.
1: Ki mile bhane ka sara dev soera ma
2: Nepali super hits
0: only on Kips FM 98.3
3: kehi naulo
4: rochak
3: ani achamma lagne tathya haru Kips 98.3 FM ma karyakram radio ma rochak
4: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM मा।

0: यो हो किप्स 98.3 FM तपाईसँगको सहयात्रा
1: किप्स FM 98.3 presents Pop Hour.
2: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
1: Every Friday 12 PM.

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा।
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
6: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत। जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हॉटस्पॉट हरुमा फ्री इंटरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहां पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टू माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: टिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
3: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
2: गजल संसार
3: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
4: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे नेपाली चलचित्रका सदाबहार गीतहरू Wednesday and Saturday 2 p.m. Thursday 10 p.m. only on Kips FM 98.3।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: सुंदर मजा टिप्स 98.3 FM
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3

0: प्रस्कुसात अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Listen to your favorite classic English songs only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station Gibbs FM 98.3 MHz.
3: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
4: के
3: ई
4: बी
5: एस
6: किप्स 98.3 FM योर कम्पानियन।
7: नयाँ नयाँ नेपाली गीत सङ्गीत।

0: Skips, 98.3 FM.
1: Yeah, here you go.
0: Your companion.
2: Your companion.
3: नुमामा नुमा सोल्टिनी त्यो दिलमा के पो छ हो खैकुनी ए हात है समय गाउनु है पालौ धान है नाचेर त्यो जानसँग माया है नसु मनमुटु साटेर

0: हिट्स 98.3 FM मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे
3: FM 98.3 MHz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.
4: Every Saturday 10 a.m., Monday 6 p.m. and Friday 2 p.m.
5: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 MHz.
6: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
5: And don't stop there, follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
3: You can dance.
7: You can sing. All you gotta do is
8: just tune in.
7: Keeps FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
9: अब धन्ना नमान्नुस् नॉनस्टॉप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
10: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
11: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
11: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
11: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
12: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत। Just tune in, radio naya generation ko.
13: सौन्दर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफ स्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा शनिबार बेलुकी

0: हिट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 पीएम।

0: Talk gibt's 98.3 FM.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे, मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
0: राजा मतिवा मती नएवा ने पुछे चंगुटु खेले
1: नेपाल भाषा या न्याय पुसे चौमेता
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स।
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे
3: बत्ती गएर हैरानै भयो।
4: अब धन नमान्नुस्, नॉन स्टॉप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर

0: Hits FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। एक पल देख लूं तो उठता हूं, जल गया सब जरा सा रहता है।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूं।

0: किप्स 98.3 एफएम मा सुन्दै हुनुहुन्छ गजल संसार।
1: तलत अजीज भी उसी स्कूल को बिलोंग करते हैं जिन पे मेहंदी हसन का असर रहा है।